0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ।
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ।
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ। वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग
1: करती है,
2: बहुत भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
1: अच्छा रुचि
2: पहुंची हुई है बहुत ज्यादा। हाँ
1: अच्छा,
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ जुहू में रहते थे हम लोग तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
1: जी
2: वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
1: अच्छा,
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा।
1: हाँ हाँ।
2: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
1: अच्छा,
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है। फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
1: अच्छा,
2: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
1: अच्छा,
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई।
1: हाँ।
2: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी।
1: हाँ।
2: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
1: अच्छा,
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
1: अच्छा,
2: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
1: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM। और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM। ओनली

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह यस वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार मनाते थे जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात है
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो. क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो और उसे मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ.
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है कुछ और इससे भी अच्छा करके दे.
0: हाँ.
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना. फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था. तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्यालात थे वो थोड़े अलग थे
0: जी.
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे.
0: अच्छा.
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे. मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ.
0: हाँ.
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया. तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा. जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है. तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ. फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है. मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है. तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो. फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी. इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही थी. एक जैसे ये है आखर
0: लुकता
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली.
0: अच्छा.
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी. अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे.
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था.
0: अच्छा.
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी.
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर. तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है.
0: अच्छा.
1: मुझे आगे लॉ करना है.
0: हाँ.
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया.
0: अच्छा.
1: बस अब क्या और क्या करना है. मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है.
0: अच्छा.
1: तो मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा विदाउट पे करनी है. तो
0: हाँ.
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा.
0: हाँ.
1: और उसमें मैं जाने लगी. वन
0: अच्छा.
1: मंथ मैंने पढ़ाया.
0: हाँ.
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता. मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाया करो.
0: अच्छा.
1: वो घर आने लगा. मैंने उसको पढ़ाया.
0: हाँ.
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए.
0: हाँ.
1: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई.
0: हाँ.
1: 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी.
0: अच्छा.
1: कि हेलो दीदी बोल रही है. मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं. मैं राजू बोल रहा हूँ. मैंने कौन राजू.
0: हाँ.
1: अरे दीदी आप भूल गई. मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी.
0: अच्छा.
1: मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है. नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में. मैं
0: क्या बात है.
1: मतलब मैं रो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से.
0: हाँ.
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था.
0: हाँ.
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था.
0: हाँ.
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध.
0: हाँ.
1: का गाय वगैरह रखते थे.
0: हाँ.
1: तो वो जब लेते थे उनसे.
0: हाँ.
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी. उसके बच्चे थे.
0: हुँ.
1: तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे.
0: हाँ.
1: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं. मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक.
0: हाँ.
1: कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी.
0: अच्छा.
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया.
0: हाँ.
1: कि उसने 12th पास किया.
0: क्या बात है.
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई.
0: हाँ.
1: सेट हो गई. तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी. अब हाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से.
0: हाँ.
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड.
0: हाँ, काम करते थे.
1: हाँ. तो जब इन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी.
0: हाँ.
1: घर में रह के क्या करोगी. ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ. मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है हाँ, वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें
0: हाँ,
1: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे
0: हाँ,
1: भी बड़े हो गए अपनी नौकरी हाँ, चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ
0: हाँ,
1: तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीवाड़ा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
1: क्योंकि क्या है ना
0: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन
1: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता
0: है जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी
0: उनका दुख दर्द देख के,
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, फिर आप पड़ जाओगे, क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था हाँ, गिरे ना कहीं
0: जी।
1: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
0: रहते हैं
1: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था। तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है
0: राइट,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, कभी सारा काम होता था
0: बराबर,
1: और आके बस
0: और अब ज्यादा
1: सोते थे
0: हाँ,
1: मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
0: कुछ
1: हाथ से
0: तो
1: कुछ
0: किया
1: तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
1: ठीक जी, थैंक यू।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे, आप बताओ। जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतनी
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: कर लेती छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है कहते हैं ना
0: जी।
1: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी
0: हाँ,
1: आज भी आई है। कल भी आई थी और आज भी आई है। किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। गांव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खास करके गांव की नदी, वो नदी जिससे न जाने हमारे कितने बचपन के सपने जुड़े होते हैं, कितनी कहानियां जुड़ी होती है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो नदी किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। कभी अगर एक्साइटेड होते हैं तो उसी नदी में डुबकी लगाते हैं और स्विमिंग करने लग जाते हैं। तो गांव की नदी से एक खास रिश्ता जरूर होता है। तो ऐसी कहानी एक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, नदी के पार वाला सपना। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भवानीपुर में सुबह का मतलब अलार्म नहीं होता था, सुबह का मतलब होता था मुर्गे की।

संभालती थी। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक चीज थी जो गंगा को रोज नोटिस होती थी, केशव का थका हुआ चेहरा। रोज सुबह वो साइकिल लेकर मंडी जाता था। मंडी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर थी। चाहे बरसात हो या हो फिर गर्मी या सर्द हवा, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, केशव साइकिल चलाता ही रहता और कई बार उसकी साइकिल रास्ते में खराब भी हो जाती थी। कभी चैन टूट जाती, कभी टायर पंक्चर हो जाता। एक बार तो तेज बारिश में वो गिर भी गया था। उस दिन रात को गंगा ने उसके पैर दबाते हुए पूछा था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? केशव मुस्कुरा दिया, अरे पगली, आदमी का शरीर काम करेगा तभी तो घर चलेगा। पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान गंगा देख चुकी थी। उस रात गंगा ने पहली बार एक सपना देखा, अपने पति को बाइक पर बैठकर हंसते हुए देखने का सपना। अगली सुबह केशव मंडी चला गया। गंगा रोटियां बना रही थी, तब उसकी नजर पुराने स्टील के डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठाया, साफ किया और धीरे से बोली, इसमें जमा करूंगी पैसा। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो केशव को एक बाइक गिफ्ट करके रहेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। 15,000 में राशन, बिजली, दवाई, कपड़े, ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन गंगा ने ठान लिया था और उसने खुद पर खर्चा करना भी कम कर दिया था। नई साड़ी बाद में ले लेंगे, मेला जाना बंद, चूड़ियां भी बाद में ली जाएगी। कभी कभी तो वो अपनी चाय में चीनी कम डाल देती थी ताकि 1-2 रुपए बचा सके। केशव को कभी पता नहीं चला, हर महीने वो किसी ना किसी तरीके से 2,000 रुपए बचा लेती। कभी दूध बेचकर, कभी दूसरों के घर पापड़ बनाकर, कभी सिलाई करके, और वो पैसे छुपा देती उस स्टील के डब्बे में। हर बार पैसा डालते वक्त वो डब्बे को हाथ लगाकर बोलती, एक दिन मेरा केशव बाइक पे जाएगा, साइकिल पे नहीं। समय धीरे धीरे गुजर गया। 3 साल बीत गए। पूरे 3 साल तक गंगा ने हर महीने पैसे बचाए। कभी बुखार, कभी सर दर्द, इन सारी हालतों में काम किया। कभी कभी भूखी भी सोई। एक बार केशव ने कहा भी, गंगा तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वो हंस पड़ी, बस थोड़ी थकान है। उसने कभी सच नहीं बताया। एक दिन गांव में मेला लगा, सारी औरतें सज धज कर गई, चंदा भी गई। चंदा गंगा की सबसे अच्छी दोस्त थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, गांव के लोगों के लेटर्स भी वो पढ़ती थी। चंदा ने पूछा, तू मेला नहीं आएगी? गंगा ने झूठ बोला, मन नहीं है। असल में उसके पास पैसा था, पर वो पैसा उसके सपने का था। उस रात जब केशव सो गया, गंगा ने डब्बा खोला। उसने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। 72,000 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा और फिर मेरे केशव की बाइक आ जाएगी। फिर मेरा केशव बाइक पर बैठकर सारा गांव घूमेगा, अपने काम पर जाएगा, मुझे अपने बाइक पर पीछे बिठाकर मेला घुमाने लेके जाएगा। न जाने ऐसे कितने सपनों में गंगा खो गई। तो दोस्तों, गांव की कहानियां कितनी प्यारी होती है, कितनी सिंपल होती है, कितनी सरल होती है, लेकिन इन कहानियों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत उस किरदार को उठानी पड़ती है जो वो कहानियों को जीता है। तो इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम इस ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना और हमने देखा और हमने सुना कि कैसे गंगा ने 72,000 रुपए बचा लिए अपने केशव के लिए। और अब देखते हैं कि किस तरीके से गंगा केशव को बाइक गिफ्ट करेगी। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था, उसका नाम था अजय। अजय थोड़ा गलत व्यवहार वाला लड़का था और लोगों गलत लोगों के साथ रहकर वो चोरी चकारी शराब पीना जुआ खेलना कर्जा न जाने कितनी कितनी चीजों में फंसा हुआ था। उसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, गांव वाले उससे दूर रहते थे। एक दिन वो रात को शराब के नशे में घूम रहा था, तब उसने गंगा को स्टील का डब्बा छुपाते हुए देख लिया। अजय की नजर पैसे पर पड़ गई। उसने सोचा लगता है काफी पैसा है। उस रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था डब्बा। उस रात तेज हवा चली, केशव थककर गहरी नींद में था, गंगा भी सो गई थी। आधी रात को अजय धीरे से घर के पीछे अंदर घुसा। उसने चूल्हे के पास मिट्टी हटाई और उसे स्टील का डब्बा मिल गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक धक धक धक धक कर रहा था। बस एक बार ये पैसा मिल जाए। वो डब्बा लेकर भाग गया। सुबह गंगा ने जैसे ही डब्बा चेक किया उसकी सांसें रुक गई, डब्बा गायब था। पहले उसे लगा शायद कहीं और रखा होगा। उसने पूरा घर उल्टा दिया, आंगन छान लिया, चूल्हा भी पूरी तरीके से खोद दिया, बिस्तर पलट दिया, सब कुछ कर लिया, पर डब्बा नहीं मिला। उसके पैर कांपने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। पर उसी वक्त केशव घर के अंदर आ गया। गंगा तुरंत आंसू पहुंचने लगी और चुप हो गई। क्या हुआ, केशव ने पूछा। कुछ नहीं, गंगा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तू रो रही है, केशव ने बोला। नहीं, मैं नहीं रो रही, गंगा ने जवाब दिया। केशव ने उसका माथा छुआ। तबीयत खराब है क्या, गंगा बस झूठी मुस्कान देकर रह गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया दिल टूटने की आवाज सच में होती है। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गंगा चुपचाप घर से निकली, उसके पैर सीधा गांव के बाहर वाली नदी की तरफ बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में बैठा करती थी। नदी के पास पहुंचते ही वो टूट गई। वो इतनी घुटन भरी थी उसके अंदर कि जैसे वो नदी के पास पहुंची वो जोर जोर से रोने लगी। नदी माँ, मैंने क्या गलत किया, उसकी आवाज हवा में घूमने लगी। तीन साल तक मैंने पैसे जोड़े, मैं बस अपने पति को खुश देखना चाहती थी। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, बस एक बाइक देना चाहती थी उसको मैं। वो रोते रोते ये सारी बातें बोलती गई। मैं उसे एक तोहफा देना चाहती थी, पर सब खत्म हो गया, सब बिखर गया। उसे नहीं पता था कि गंगा जब ये सारी बातें कर रही थी, कुछ दूर पेड़ के पीछे अजय खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ में वही डब्बा था और पहली बार उसे अपनी चोरी पर शर्म आ रही थी। अजय चुपचाप गंगा की बातें सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसने डब्बा खोला, अंदर साफ सुथरे नोट थे, कुछ पुराने कुछ नए, और एक छोटी सी कागज की पर्ची।
उस पर गंगा ने अपनी तरफ से कुछ बना रखा था, एक आदमी, एक बाइक और उसके पास दिल का निशान। अजय की आंखें भर गई। उसे याद आया कि उसकी माँ भी उसके लिए पैसे बचाती थी और आज वो दूसरों की उम्मीद चुरा रहा था। नदी के किनारे गंगा अब भी रो रही थी, भगवान बस मुझे मेरा सपना दे दो, मुझे मेरा सपना लौटा दो। अजय का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैं कितना गिर गया हूं। उस रात उसने पहली बार शराब की बोतल फेंक दी। रात गहरी हो चुकी थी। केशव घर के बाहर बैठा था, गंगा का इंतजार कर रहा था। तू इतनी देर तक कहां थी, केशव ने पूछा। गंगा ने झूठ बोला, आप चंदा के घर थी। केशव ने कुछ नहीं पूछा। रात को दोनों सो गए और आधी रात अजय फिर उस घर के पास आया, पर इस बार चोर बनकर नहीं, पछताया हुआ इंसान बनकर। उसने धीरे से वही डब्बा उसी जगह वापस रख दिया और उस 72,000 रुपए के साथ उसने उसमें कुछ अपने पैसे भी रख दिए, लगभग 15,000। उसने एक कागज निकाला, उस पर लिखा, माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, पर आपका प्यार देखकर समझ गया कि गरीबी से बड़ा गुनाह इंसानियत खोना होता है। अजय ने नोट डब्बे के नीचे रख दी और चुपचाप चला गया। अगली सुबह को क्या हुआ, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आ रहा है एक ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सुन रहे थे कि अजय ने वो डब्बा फिर से वहां वापस लौटा दिया। अब अगली सुबह क्या हुआ तो चलिए देखते हैं। अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह गंगा ने आदत से डब्बे वाली जगह देखी और उसकी चीख निकल गई, हे भगवान! डब्बा वापस था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत डब्बा खोला। पैसे भी थे और पहले से ज्यादा थे। उसकी आंखें भर गई, आंसू गिरने लगे। ये कैसे हुआ? फिर उसकी नजर कागज पर पड़ी, पर वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकती थी। उसने कागज संभाला और सीधा चंदा के घर भागी। चंदा, चंदा! चंदा बाहर आई। चंदा, ये पढ़ना, इस पे क्या लिखा है? चंदा ने कागज लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो वर्ड्स बोलती गई, गंगा की आंखों से आंसू बहते गए। माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया। मैं पैसे ले गया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया। चंदा ने पढ़ना रोका। गंगा, तेरा पैसा किसी ने चुराया था क्या? गंगा चुप हो गई। उसने नोट को अपने सीने से लगा लिया। भगवान उस इंसान को सही रास्ता दिखाए। बस ये कहकर गंगा अपने घर आई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई बाइक आई, काली चमकदार बाइक। केशव ने दूर से देखा और बोला, वाह क्या बाइक है। तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल। किधर चल? अरे बस चल। और दोनों बाइक के पास चले गए और गंगा ने कहा, अब आंखें बंद करो। केशव ने आंखें बंद की और गंगा ने धीरे से उसका हाथ आगे खींचा और केशव के हाथ में रख दी उस बाइक की चाबी। केशव हैरान, ये क्या है? तुम्हारी बाइक। केशव हंस पड़ा, पागल है क्या? नहीं, सच में तुम्हारी बाइक है। कहां से आई ये बाइक? गंगा ने मिक्स्ड इमोशन वाली आवाज में कहा, 3 साल से पैसे जोड़ रही थी केशव। केशव चुप हो गया। दोनों के आंखों में आंसू थे, खुशी वाले थे या गम वाले थे इसका पता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि दोनों बहुत खुश थे। तू मेरे लिए? गंगा मुस्कुराई। तुम रोज साइकिल पे इतना दूर जाते थे ना? केशव ने तुरंत उसके पैर छू लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? केशव ने जवाब दिया, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी ताकत है गंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे और मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। और पहली बार उस वक्त केशव ने गंगा से 5 साल में पहली बार कहा, आई लव यू। उस दिन दूर से अजय सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया था कि इंसानों के पैसे नहीं, इंसानों को नियत से अमीर होना होता है। कुछ दिनों बाद अजय ने चोरी छोड़ दी, गांव के मैकेनिक के पास काम शुरू कर दिया। लोग उस पर पहले भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन केशव बाइक सर्विसिंग के लिए गया उसी गैरेज में जहां अजय काम करता था। अजय ने बाइक पहचान ली, वही बाइक जिसके लिए एक औरत ने 3 साल सपना देखा था। अजय की आंखें भर गई। केशव बोला, क्या हुआ? अजय हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं भैया, बस बाइक बहुत खास है। ये कहकर अजय अंदर चला गया। एक शाम गंगा फिर उस नदी के पास गई, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने पानी को देखकर कहा, उस दिन मैंने दर्द बताया था, आज खुशी बताने आई हूं। हवा धीरे से चली, जैसे नदी भी मुस्कुरा रही हो। दूर केशव बाइक लेकर आ रहा था। गंगा! वो हंस पड़ी और भागकर बाइक पर बैठ गई।
केशव ने पूछा, कहाँ चले? गंगा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाँ सपने पूरे होते हैं। बाइक धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी और पीछे पीछे नदी की लहरें चुपचाप एक कहानी सुना रही थी कि सच्चा प्यार कभी चोरी नहीं होता, वो तो और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना, एक ऐसी कहानी जहां केशव और गंगा एक पति पत्नी हैं। एक पत्नी ने अपने पति के लिए एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए उसने दिलो जान से मेहनत की। उम्मीद है कि ऐसी कहानियां हमारे अगल बगल में भी होती होंगी, पर शायद हम कभी उसे देखते नहीं या महसूस नहीं कर सकते, या कभी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि किसी की छोटी से छोटी मेहनत भी उस इंसान के लिए क्या मायने रखती है। तो बस आज के कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगली बार जरूर मिलेंगे कुछ अच्छी कहानियां लेकर जो आपकी दिल को छुए। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर साइनिंग ऑफ।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पहन बना रतबाला खुल जाए बंद अकल का।

अपनी माँ की एक लौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? वही सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी की मौजूदगी से महका आचार्य 90 FM का चमन। भाई आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयाँ, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लंच या डिनर पार्टी में परोसने के लिए ये एक शानदार मिठाई है और इस शानदार मिठाई का नाम है मैंगो स्टफ लीची। मैंगो स्टफ लीची बनाने में बेहद आसान है और आपकी स्वीट क्रेविंग को ये तुरंत शांत कर देगी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो स्टफ लीची बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पूरी तरह से पकी हुई लाल लीची 15 या 20, गाढ़ा दूध 1/2 लीटर, फिर हमें चाहिए नींबू का रस 2 चम्मच, मिश्री पाउडर मींस खड़ी साखर का पाउडर 4 चम्मच, ताजे और पके हुए आम 2, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहे तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छेना मींस ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मीन्स गूंथ कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मीन्स खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई, लीची को सिर्फ एक चीरा मीन्स कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहाहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ्ड मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर, और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होममेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM मीन्स योर ओन रेडियो, स्वाद का जायका निभाती हूँ फ्रॉम अवर स्टूडियो। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस। सराहना होगी आपकी भी जब मिलेगा हमें आपका गाइडेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है।

6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची। फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए। साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी। इसलिए बी केयरफुल, हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुत्फ उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए दो लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए आधा चम्मच नमक और एक चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात! फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़?

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। इस स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

अजय 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है ना भाई? इस गर्मी ने सबकी हालत तो खराब ही कर दी है, लेकिन फिकर नॉट सेनोरिटा, व्हेन आई एम हियर यू काहे को फियर। अर्ज किया है, जब परेशान करे गर्मी तब पड़ती है तैयारी करनी। देसी खाने का किया जुगाड़, गर्मी को देगा जड़ से उखाड़। भारतीयता अपनाने का मेरा ये प्रण, रेसिपी सुनने का आ गया क्षण। भूले बिसरे शरबतों को अपना कर वापस, आओ दूर भगाए हम गर्मी की ये आफत। गर्मी को भगाने का सुनो देसी इलाज, साथ में मनपसंद गाने बदलेंगे आपका मिजाज। स्वाद का जायका निभाने आ गई है भारतीय सीमा, रक्षा करने देश की हमारे वीरों ने ताना सीना। सारी दुनिया में बजेगा भारत का ही डंका, स्वाद का जायका सुनकर दूर होगी आपकी शंका। विश्व विजय की गाथा सुनाने तैयार हैं हम, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं किसी से कम। आज हम बनाने वाले हैं गर्मी को मात देने वाली ट्रेडिशनल रेसिपी, जिसको हम शरबत के नाम से जानते हैं। उसमें नंबर वन पे है सत्तू पानी, मींस सत्तू का शरबत। इसे प्रकृति और संस्कृति की कालातीत कला माना जाता है। हमारे बिहार का ये एकदम फेमस पेय है। आज इसे हमारे भारत देश के लगभग सभी हिस्सों में पिया जाता है। सत्तू का पानी अपनी पसंद के अनुसार मीठा या नमकीन दोनों तरह का हो सकता है। ये जीरा, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और काला नमक, इनको सत्तू और पानी से मिलाकर बनाने जाने वाला एक लाजवाब पेय ऐसे माना जाता है। ये एकदम आसानी से पच जाता है। इसमें मौजूद हाई फाइबर एक हेल्दी ड्रिंक बनाने में इसे मदद करता है। चलिए अब हम सत्तू के शरबत को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं, लेकिन उसके पहले हम घर पर ही सत्तू का पाउडर बनाते हैं। अब इसे घर पर बनाने का इंस्टेंट तरीका आप सुनिए। इसके लिए हमें चाहिए बाजार में आसानी से मिलने वाला भुना चना 4 कटोरी और 1 चम्मच रोस्टेड जीरा। हियर भुना चना मींस भुने हुए काले चने, वो भी छिलके के साथ। इस काले चने को हमें मिक्सर में पीसना है। जब तक इसका बारीक पाउडर ना बने हमें इसे मिक्सर में पीसना है। जब ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में आए तब हमें इसे छान लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, काला चना और रोस्टेड जीरा का मिश्रण हमें पल्स मोड पर मिक्सर में पीसना है। ऐसा करने से ये दरदरा मींस मोटा मोटा नहीं रहेगा। पल्स मोड पर पीसने से इसका बारीक आटा जैसा पाउडर बनेगा। मिक्सर में पीसने के बाद हमें इस बारीक आटे को एक महीन छलनी से छानना है। महीन छलनी मींस एकदम छोटे छेद वाली छलनी, जो हम इस आटे को छानने के लिए यूज करेंगे। फिर इस ताजे सत्तू को आप एक एयरटाइट डब्बे में स्टोर कीजिए। इसे तैयार करने के बाद ये सत्तू का आटा आप लगभग 2 महीने तक आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम पारंपरिक बिहारी तरीके से सत्तू का शरबत बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सत्तू का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सत्तू का आटा 1 कटोरी, प्याज 1, पुदीने के पत्ते 15-20, भुना जीरा 1 चम्मच, नींबू 1, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए हरी मिर्च 1, पानी 4 ग्लास, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरेंगी। रेसिपी सुनने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्याज का छिलका हटाइए, फिर उस प्याज मींस कांदा को बारीक टुकड़ों में काट लीजिए।
हरी मिर्ची को भी एकदम बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, तब तक आप सुनिए एक गाना।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। सत्तू का शरबत बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, अब हम बढ़ते हैं इस शरबत की रेसिपी की ओर। सबसे पहले आप एक बर्तन को लीजिए, उस बर्तन में सबसे पहले आप डालिए सत्तू का आटा। फिर इस सत्तू के आटे में मिक्स कीजिए लगभग एक ग्लास भर के सादा पानी और ढेर सारा प्याज भी ऐड कीजिए। इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है, इसके लिए आप विस्कर या चर्नर को यूज कीजिए। आप चाहे तो मिक्सर के जार में इस मिश्रण को डालकर एकदम स्मूथ बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो भाई इस मिश्रण में बाकी बचा 3 ग्लास पानी भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा तो सुनिए, अगर हम शुरुआत में ही सारा पानी एक साथ सत्तू में डालते तो एक प्रॉब्लम हो जाती। इससे सत्तू के आटे की गुठलियां बन जाती और शरबत का टेक्सचर स्मूथ होने की बजाय गुठलियों वाला बन जाता, इसलिए बी केयरफुल। अब इस सत्तू और पानी वाले मिश्रण को हम ऐड करेंगे कटी हुई प्याज में। हमें इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अब बारी आती है भुना हुआ जीरा और नमक की, इसे भी उस मिश्रण में अच्छे से मिला लीजिए। फिर हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, नींबू का रस और साथ ही बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते। दैट्स इट। अब इस मिश्रण को करछी की मदद से मिक्स करना है। फाइनली हमारा सत्तू का हेल्दी शरबत तैयार हो गया है। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हमें 4 ग्लास लेने हैं। उन ग्लास में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे सत्तू का लाजवाब शरबत। इस पर हम रखेंगे पुदीने के 3-4 पत्ते और आप चाहे तो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस पर देसी गुलाब के फूल की 2 या 4 पंखुड़ियां मींस रोज पेटल्स को भी रख सकते हैं। फिर क्या करें जनाब, इस सुंदर से सत्तू शरबत की छवि को आप कीजिए अपने मोबाइल कैमरा में बंद, क्योंकि इसका लुफ्त उठाने लम्हे बचे हैं चंद। इस प्रकार हमारा शुद्ध देसी हेल्थ ड्रिंक टू बीट द समर हीट हो गया है तैयार। जंक मींस फास्ट फूड और सत्तू का शरबत फास्टेस्ट फूड। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सत्तू के शरबत की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है सत्तू की मिठास। प्यारा सा एक शरबत, मेन इंग्रेडिएंट है सत्तू। टेस्ट है इतना प्यारा, मैं तो हो गई लट्टू। ये फेमस है एक राज्य में, नाम है जिसका बिहार। गर्मी को देने मात, सत्तू शरबत एकदम तैयार। गुड़ या चीनी से बनाए इसे मीठा, या फिर मिर्ची और प्याज से बनाए थोड़ा सा तीखा। जब देनी हो इस गर्मी को मात, तब मान लीजिए जनाब भारतीय सीमा की बात। स्वाद का जायका शो का जब छा जाए नूर, तब टेस्टी खाना खाकर गर्मी को भगाए दूर। सोमवार की दोपहर और शुक्रवार की शाम, ऑडियंस जी अब कर दो आप मेरे नाम। हमारे शो पर सुनिए सीजन स्पेशल रेसिपीज, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन की लाजवाब केमिस्ट्री। अगली रेसिपी को सुनने हो जाइए तैयार। हम पेश करेंगे बेल का शरबत, आप क्यों है बेकरार। जी हाँ, हमारी अगली रेसिपी का नाम है बेल का शरबत। हम सब ये जानते हैं कि शिवजी को बेल के पत्ते मींस बिल्व पत्र अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिल्व पत्र के पेड़ पर पत्तों के साथ फल भी उगते हैं, और इन मीठे फलों से बनता है समर सीजन का स्पेशल शरबत, जो गर्मियों में बेहद फायदेमंद होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इस वजह से गर्मियों में बेल का शरबत खास तौर पे पिया जाता है। पके हुए बेल का गूदा मींस पल्प, थोड़ा सा गुड़ और पानी मिलाकर बनता है ये रिफ्रेशिंग बेल शरबत। वैसे देखा जाए तो बेल के वृक्ष सारे भारत में पाए जाते हैं। बेल का फल आकार में नाशपाती के फल जैसे होता है।

टू से पैर शेप का होता है। इसका छिलका लकड़ी जैसे और एकदम हार्ड होता है और इसके अंदर का पल्प मीठा, गाढ़ा और ऑरेंज होता है। गर्मी के सीजन में फ्रूट्स की लिस्ट बनाई जाए तो वाटरमेलन, मैंगो और बेल, ये फ्रूट्स इनमें सबसे अव्वल स्थान पर रहेंगे। बेल के फल को खाना हमारी इम्यूनिटी और स्किन के लिए काफी फायदेमंद है, इसलिए इसे अपने ब्यूटी रेजिम में जरूर शामिल कीजिए। इसे गर्मियों का सुपर फूड भी कहा जाता है। अंग्रेजी में वुड एप्पल इस नाम से जाने वाले बेल के फल का शरबत आप इन गर्मियों के दिनों में जरूर ट्राई कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारती सीमा। अब हम बेल के शरबत को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। बेल का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बेल के फल 1 किलो, चीनी 4 या 5 चम्मच, भुना जीरा 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच। बेल शरबत की रेसिपी को सुनने से पहले हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हमें बेल के फलों को साफ पानी से धो लेना है। अब हमाम दस्ता या मूसल की मदद से हम बेल के फलों को ब्रेक करेंगे। बेल के फल जब टूट जाए तब हमें इसके अंदर का पल्प मीन्स गूदा निकालना है। इस प्रोसेस में आप चम्मच यूज कर सकते हैं। अब ये पका हुआ पल्प आप एक भगोने में निकाल लीजिए। भगोना मीन्स गोल बर्तन, मराठी में इसे वाड़गा कहते हैं। अब सपोज बेल फल का पल्प अगर दो कटोरी भर के निकला है तो उसकी डबल क्वांटिटी में हमें पानी लेना है, मीन्स चार कटोरी पानी लीजिए। फिर आगे क्या करें? तो भाई आगे सुनिए, अपने प्यारे प्यारे हाथों से सारा पल्प आपको पानी में अच्छी तरह से मसलना है। हमें इस मिश्रण को इतना मसलना है कि सारा पल्प और पानी एक लगने लगे। फिर हमें इस मिश्रण को छानना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक बड़ी छलनी। इस छलनी की मदद से बेल और पानी के मिश्रण को छान लेना है। उसके बाद एक चम्मच से दबा दबा कर उस मिश्रण में से सारा रस हमें निकालना है। इस मिश्रण का सॉलिड पार्ट हम यूज नहीं करेंगे। छान कर निकाले हुए लिक्विड पार्ट में हम मिलाएंगे थोड़ी सी चीनी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीनी की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर चम्मच की मदद से चीनी को उस मिश्रण में हमें मिक्स करना है। लगभग 2-3 मिनट के बाद सारी चीनी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक और भुना हुआ जीरा। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है डेकोरेशन की। इतनी क्वांटिटी शरबत से हम लगभग 4-5 ग्लास भर के बेल शरबत बना सकते हैं। सबसे पहले आप लीजिए लंबे वाले कांच के ग्लास। उन ग्लास के किनारों को आप थोड़ा सा पानी लगाइए। अब एक छोटी सी प्लेट में नमक और शक्कर का मिश्रण हमें बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के शक्कर। इस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर आप ग्लास के किनारों को रख दीजिए। सारे ग्लास अपसाइड डाउन करके रखने हैं ताकि ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल डेकोरेशन वाला प्रोफेशनल लुक आ जाए। हमें इस तरह से सारे ग्लास को क्रिस्टल डेकोरेशन करना है। फिर इन ग्लास को एक सुंदर से ट्रे में रखिए। बाद में एकदम नजाकत से तैयार बेल शरबत को उसमें डालिए। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। वैसे बर्फ डालना ऑप्शनल है। मुझे तो रूम टेम्परेचर वाला ओरिजिनल बेल शरबत ही अच्छा लगता है। बर्फ डालने से ओरिजिनल टेस्ट हाइड हो जाता है। वैसे आपको चिल शरबत ज्यादा पसंद है या मटके के ठंडे पानी से बना नेचुरल कूलर? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। बेल का टेस्टी और मिठास भरा समर कूलर अब रेडी हो गया है और इसे अपनों के साथ शेयर करने हम एकदम तैयार हैं। तो भाई देर किस बात की, झटपट बेल शरबत बनाइए और फटाफट इसे एंजॉय भी कीजिए। इस मीठे बेल शरबत की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है मिठास से भरा बेल। अनोखा सा एक फल नाम है जिसका बेल, इसका शरबत पीकर गर्मी को किया फेल। पानी के साथ बेल और शक्कर, इस मिलाप से दीजिए गर्मी को टक्कर। बेल शरबत का ओरिजिन हमारा प्यारा बिहार, इस शरबत को पीकर चेहरे पर आए निखार। समय समय पर बदलती ये प्रकृति अपना रूप, कभी जोरदार बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप। हर मौसम में अगर रखना है अपने आप को स्वस्थ तो जरूर सुनिए स्वाद का जायका, जिसमें है रेसिपीज
और गाने मस्त। मौसम के अनुसार उपलब्ध जो फल, वही तो है जनाब अच्छी तबीयत का हल। विदेशी चीजों से क्यों करे प्यार, अपनाए देसी खाना मिलकर सारा परिवार। भाई फिलहाल लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाने का ट्रेंड चल रहा है, हमें भी अपने देश की अर्थव्यवस्था मींस इकोनॉमी को स्ट्रांग करने देसी फूड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। आप देसी खाना अपना कर देखिए तो सही, हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। जब घर के सारे सदस्य साथ मिलकर किचन के कामों में हाथ बटाएंगे तब सारा घर हेल्दी खाना एक साथ बैठकर एंजॉय करेगा। इसे ही तो कहते हैं अपनापन। अपनों का साथ हो तब हेल्दी नमक और हल्दी वाला सादा सा खाना भी पकवान सा टेस्ट होता है। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया सत्तू का फास्ट फूड, नहीं बल्कि फास्टेस्ट फूड। भुने हुए काले चने का आटा और शक्कर पानी में मिलाकर हमने बिहार का ये फेमस ड्रिंक बनाया। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ये सत्तू का शरबत एकदम कमाल का साबित हुआ है कि नहीं, इसलिए आप इसे जरूर बनाइए। फिर हमने बनाया भगवान शिव जी का प्रिय बेलपत्र के पेड़ पर उगने वाला बेल फल यूज करके मिठास से भरा बेल का शरबत। मौसम के अनुसार उपलब्ध साधन सामग्री से स्वाद का जायका निभाने की छोटी लेकिन कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को सुनने के लिए हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अर्ज किया है, ऐसी दुनिया का आगाज करो जो कल करो सो आज करो। परवाह नहीं मुझे किसी की, जमाना चाहे कितना भी खिलाफ हो। हिसाब किताब हमसे ना पूछ ए जिंदगी, तूने सितम नहीं गिने तो हमने जख्म नहीं गिने। फिर निभाने आऊंगी स्वाद का जायका, बन गई हूं मैं इस शो की नायिका। थाम लो भारतवासियों तुम एक दूसरे का हाथ, हमारी भारतीय परंपरा मींस कामयाबी की बात। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

हेलो एंड वेलकम टू अच्छा दिन 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज ये शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। सो आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिस कहानी में एक दादी का सपना है कि उसकी पोती उसका नाम रोशन करे। जैसे बचपन में भी बहुत सारे हमारे सपने होते हैं और हमारे माता पिता के भी सपने होते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर ये बने, पढ़ लिख कर वो बने, अफसर बने, वकील बने, तरह तरह के सपने होते हैं। तो एक ऐसी सपने की कहानी है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो चलिए जानते हैं दादी का सपना। बेटा, जिंदगी में गरीबी बुरी नहीं होती, हार मान लेना बुरा होता है। ये लाइन हर सुबह सुनैना को सुनने मिलती थी। मुंबई के एक छोटे से एरिया में एक पुराना सा दो कमरों का घर था। छत बारिश में टपकती थी, दीवार पर नमी रहती थी और किचन में एक पुराना सा चूल्हा था जहां रोज सुबह चाय की खुशबू उठती थी। उस घर में रहते थे तीन लोग, सुनैना, उसकी माँ और उसकी दादी शकुंतला देवी। सुनैना 17 साल की थी, पतली सी शांत सी लड़की। आंखों में सपने तो बहुत थे पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट, मैथ्स में वीक, इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन और घर में रोज के झगड़े। उसके पापा महेश 2 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे किसी और के साथ। उस दिन के बाद कविता अंदर से टूट गई थी। वो सिलाई करके घर चलाती थी लेकिन फ्रस्ट्रेशन हर वक्त सुनैना पर निकलता। तुमसे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई में 0, IPS ऑफिसर बनोगे तुम, हंसी आती है मुझ पर तुम। सुनैना चुप हो जाती पर एक इंसान था जो उसके ऊपर यकीन करता था, उसकी दादी शकुंतला देवी। 72 साल की एक कमजोर जिसके पैरों में ताकत

0: कमी, पर हौसले जो थे उनके पहाड़ जैसे। हर रात वो सुनैना के सर पर हाथ रखती और कहती, बेटा तू ऑफिसर जरूर बनेगी, वो भी पुलिस वाली अफसर बनेगी। सुनैना हंस पड़ती, दादी मुझे तो इंग्लिश का पैराग्राफ तक नहीं आता। फिर दादी भी मुस्कुरा देती, तो क्या बेटा तुम सीख लोगी। एक दिन स्कूल में सेमिनार हुआ, एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर आई, आईपीएस अदिति राव। यूनिफॉर्म, कॉन्फिडेंस, आवाज में दम, पूरा हॉल क्लैप कर रहा था। अदिति मैम ने एक बात कही, बैकग्राउंड डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, डिसिप्लिन डस। सुनैना बस उन्हें देखती रह गई। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं भी? वो घर आई तो मां चिल्ला रही थी बिजली के बिल को लेकर। पढ़ाई का ड्रामा बंद करो सुनैना, ट्वेल्थ पास हो जाओ, वही बहुत है। सुनैना चुपचाप कॉर्नर में बैठी थी। दादी उसके पास आई, आज कुछ हुआ है क्या? सुनैना धीरे से बोली, दादी आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं? दादी की आंखों में चमक आ गई, तू बनेगी? सुनैना ने पहली बार सिर हिलाया, हां पर शायद नहीं हो पाएगा दादी। दादी सीधा बोली, हो पाएगा, पर मम्मी मैं हूं ना। उस रात शकुंतला देवी ने अपने पुराने स्टील के डब्बे से 5,000 रुपए निकाले। ये पैसे उन्होंने अपनी दवा के लिए संभाल कर रखे थे। वो पैसे सुनैना के हाथ में दिए, कल से कोचिंग ज्वाइन कर। सुनैना रो पड़ी, दादी आपकी मेडिसिंस? दादी मुस्कुराई, बुढ़ापे में दवा से ज्यादा खुशी काम आती है बेटा। फिर क्या, अगले दिन सुनैना कोचिंग गई, फीस भरी और कोचिंग स्टार्ट हुई। और वही सुनैना को रियलिटी समझ आ गई। बाकी के बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, करंट अफेयर्स याद थे, नोट्स परफेक्ट, और सुनैना बेसिक ग्रामर तक भी। टीचर ने एक दिन पूछा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सुनैना खड़ी हुई पर जवाब नहीं दे पाई। पूरा क्लासरूम हंस पड़ा, आईपीएस बनना है मैडम को। उस दिन वॉशरूम में खुद को देखकर वो टूट गई, मैं नहीं कर सकती। रात को घर आई तो मां ने रिपोर्ट कार्ड देखकर और सुना दिया, फेलियर। सुनैना ने बुक साइड में रख दी, मैं नहीं पढ़ूंगी अब। दादी चुपचाप उसके पास बैठी, फिर धीरे से बोली, एक कहानी सुनाऊं? सुनैना चुप रही। जब तेरे दादा मुझे इस घर में लाए थे तब मुझे साइन करना भी नहीं आता था, लोग मुझे गवार बोलते थे। फिर दादी? फिर मैंने सीखा। कैसे? रोज थोड़ा थोड़ा करके। दादी ने उसका हाथ पकड़ा, आईपीएस एक दिन में नहीं बनते बेटा, थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। अब रोज रात को एक अजीब सी क्लास लगने लगती। टीचर होती शकुंतला देवी, सुनैना की दादी, और स्टूडेंट बनती सुनैना। दादी खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर जीवन को समझती थी। वो न्यूज़पेपर लेकर बैठती, ये वर्ड पढ़, इकोनॉमी मीनिंग पता नहीं तो कल तक पता कर। हर दिन एक नया वर्ड, हर दिन एक नई लर्निंग। इंग्लिश मूवीज सबटाइटल्स के साथ, मिरर के सामने स्पीकिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स का चार्ट, और एक रूल, हर दिन बस कल से बेहतर बनना है। स्लोली स्लोली सुनैना इंप्रूव होने लगी, पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। तो दोस्तों, सुनैना टूट चुकी थी पर टूटकर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास उसकी दादी थी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का साथ में होना बहुत जरूरी होता है जो आपके गिरने पर आपको उठाए, आपको सही रास्ता दिखाए। तो वो था सुनैना के पास उसकी दादी का। अब सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा ब्रेक के बाद।
1: एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा चेंज, यही फर्क होता है क्यों में और क्यों नहीं में।

वेलकम टू आचार्य FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कहानियों के गुल्लक में। हम सुन रहे थे सुनैना और उसकी दादी शकुंतला देवी की कहानी। सुनैना का सपना है IPS ऑफिसर बनना। अब सुनैना ने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, लेकिन कोचिंग के आगे का सफर काफी डिफिकल्ट है। तो देखते हैं सफर कैसे डिफिकल्ट है। 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, सुनैना फेल हो गई मैथ्स में। घर में तूफान छा गया, कविता चिल्लाई, बस खत्म, अब कोई कोचिंग नहीं होगी। पर मम्मी चुप, उसने बुक्स तक फेंक दी। IPS ऑफिसर बनेगी तू IPS ऑफिसर बनेगी। 12th पास नहीं कर पाई और IPS ऑफिसर बनना है। सुनैना का कॉन्फिडेंस टूट गया। उस रात उसने पहली बार सुसाइड के बारे में सोचा। छत पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए, तब पीछे से आवाज आई, तू हार गई। दादी थी पीछे। सुनैना बहुत फूट फूट कर रो पड़ी। मैं फेलियर हूं दादी। दादी ने उसका चेहरा पकड़ा। फेल होना और खत्म होना अलग बात होती है बेटा, पर सब मेरे अगेंस्ट है दादी। तो क्या हुआ, मैं तो तेरे साथ हूं ना। फिर सुनैना ने पूछा, अगर मैं कभी ऑफिसर नहीं बनी तो? दादी मुस्कुराई, तो भी तू मेरी चैंपियन ही रहेगी ना। उस रात दादी की बातों ने सुनैना को फिर से मोटिवेट किया और उसने पूरी रात सोचने के बाद डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी को एक चांस और देगी और वो एक बार और ट्राई करेगी। सुनैना ने रिपीट एग्जाम दिया। इस बार सुनैना 12th पास हुई। मार्क्स अच्छे नहीं थे पर पास थी। दादी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी इस बात के लिए। कविता को ये सब पसंद नहीं आया। एक एग्जाम क्या पास कर लिया तो कलेक्टर बन गई क्या? पर सुनैना अब बदल रही थी। उसके ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से स्टार्ट की, साथ में लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम भी। सुबह 5 बजे उठना, न्यूज़पेपर, नोट्स, कोचिंग वीडियोस, नाइट रिवीजन। कभी कभी थक जाती थी वो, पर हर बार दादी एक ही बात बोलती, यूनिफॉर्म इमेजिन कर, यूनिफॉर्म, और वो फिर से पढ़ने लगती। 3 साल बाद अचानक से सुनैना के घर में एक भूचाल आया। वो भूचाल था उसके पिताजी। 3 साल बाद महेश वापस घर आए। बाल सफेद थे, थका हुआ चेहरा था, और जिस शख्स के लिए वो अपना घर, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी मां छोड़कर गए थे, वो शख्स अब उन्हें छोड़ चुका था। कविता ने जैसे महेश को दरवाजे पर देखा, उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। पर सुनैना चुप थी। महेश ने धीरे से कहा, एक बार बात कर सकता हूं? उसने सुनैना को देखा, तो इतनी बड़ी हो गई। सुनैना के अंदर सालों का गुस्सा था, क्योंकि महेश एक शख्स के लिए पूरी फैमिली को ऐसे ही तन्हा छोड़कर चला गया था। सुनैना ने अपने घर की जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, कैसे उसकी मां सिलाई का काम करती और घर को चलाती, साथ ही साथ दादी के जो रखे हुए पैसे थे, जो दादी ने दवा के लिए संभाल कर रखे थे, वो पैसे भी दादी ने सुनैना के पढ़ाई में लगा दिए थे। सुनैना ने ये सब बहुत नजदीक से देखा था, तो वो इतनी गुस्सा हो गई महेश पर और उसने कहा, अब क्यों आए हो?
महेश की आंखों में शर्मिंदगी थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, पर मैं सब सही कर दूंगा। सुनैना कुछ बोली नहीं। फिर दादी आई और दादी बहुत गुस्से में थी। दादी ने महेश से कहा, बाप गलत हो सकता है पर बेटी को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। उस दिन सुनैना ने समझा पेन को पावर बनाना क्या होता है। फिर सुनैना ने तैयारी बड़ी जोरों शोरों से की। वही नोट्स, वही रिवीजन, वही कोचिंग वीडियोस, वही नाइट रिवीजन, जैसे मानो उसकी जिंदगी में दूसरी कोई चीजें ही नहीं थी। वो सुबह उठती, कोचिंग वीडियोस देखती, नाइट में रिवीजन करती, जब लाइब्रेरी में जाती तब पढ़ाई करती, लाइब्रेरी का काम करती। उसकी जिंदगी बस उसी एक सपने के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसे उस सपने के अलावा दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। उसने 22 साल की उम्र में अपना फर्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट दिया। यूपीएससी प्रीलिम्स थी। एग्जाम हॉल के बाहर हजारों की भीड़ में स्टूडेंट्स थे। सब कॉन्फिडेंट, एकदम किसी में कोई हिचकिचाहट नहीं, जैसे मानो बस वो यूपीएससी देने के लिए ही बने हो। और दूसरी तरफ सुनैना के हाथ कांप रहे थे। उसने दादी को कॉल किया। दादी, बहुत डर लग रहा है दादी। दादी वहां से बोली, डर तो मुझे भी लग रहा है, फिर पर मेरी पोती शेर है। ये बातें सुनकर सुनैना हंस पड़ी। एग्जाम हुआ और एग्जाम के बीच वो टेंशन उसके सर में मंडराता ही रहा कि क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगी, क्या मैं पास हो जाऊंगी या नहीं होऊंगी। कैसे तैसे एग्जाम निकल गया। फिर एग्जाम के बीच से लेकर रिजल्ट आने तक के दिन में जो बीच का समय होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी भी व्यक्ति को काटने के लिए। वो वक्त काटे नहीं करता था। सुनैना हर रोज रिजल्ट के बारे में सोचती। रिजल्ट आया, फेल्ड 3 मार्क्स। दुनिया दोबारा टूट गई। वो रूम में बंद हो गई। 3 दिन तक किसी से बात नहीं की। फिर दादी अंदर आई, हाथ में चाय का कप लिए हुए। एक सवाल पूछो सुनैना। सुनैना चुप थी। 3 मार्क्स से हारी, करेक्ट? सुनैना ने सर हिलाया। मतलब रेस में थी ना? सुनैना रो पड़ी। फिर दादी ने कहा, अगली बार 5 मार्क्स ज्यादा लाना। तो दोस्तों, सुनैना की पहली कोशिश फिर फेलियर। सुनैना ने फिर कैसे तैसे अपने आप को संभाला, फिर कोशिश की, फिर फेलियर। क्या अब सुनैना अपनी दादी से प्रेरित होकर तीसरी बार कोशिश करेगी अपनी जिंदगी के लिए? क्या वो दूसरी बार यूपीएससी अटेम्प्ट कर पाएगी? तो जानते हैं ये एक ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आचार्य 90 एफएम में। मैं आप सुन रहे थे दादी का सपना कहानियों की गुल्लक में आचार्य 90 एफएम पर। तो हमने देखा कि सुनैना कैसे अपना फर्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट 3 मार्क्स से पीछे रह गई। फिर दादी ने कहा कि अगली बार 5 मार्क्स लाना। पर अभी देखने लायक ये है कि क्या सुनैना फिर से रीअटेम्प्ट करेगी या फिर हार कर एक कोने में बैठ जाएगी। अगला साल थोड़ा और टफ था। सुनैना ने सोचा कि अभी एक और अटेम्प्ट देते हैं दादी के कहने पर। लेकिन इस बार कुछ अलग मुसीबतें थी। इस बार पैसे कम थे, स्ट्रेस ज्यादा था, और इन सबसे ज्यादा एक चीज थी, वो थी इस बार दादी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने कह दिया था दादी का हार्ट वीक है। सुनैना हॉस्पिटल के बाहर असमंजस में थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी थकान थी, मायूसी थी, न जाने कितने सारे गम एक चेहरे पर अलग अलग इमोशन बयां कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन बयां कर रहे हैं, अलग अलग बातें बयां कर रहे हैं। जो उसके अंदर होने वाली एक जंग है, उस जंग में इतने पहलू है कि उसके चेहरे पर वो साफ दिखाई दे रहे थे। पर फिलहाल सुनैना के लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी उसके दादी का ठीक होना। सुनैना ने कहा, भगवान मेरी दादी को ठीक कर दो। हॉस्पिटल बेड पर भी दादी ने पूछा, करंट अफेयर्स रिवाइज किया? सुनैना हंस पड़ी आंसुओं के बीच, दादी प्लीज। आईपीएस ऑफिसर को इमोशनल नहीं करते, लेकिन क्या मैं आईपीएस ऑफिसर बन पाऊंगी दादी? बनेगी बेटा, जरूर बनेगी। हाँ बनूंगी तभी ना जब आप ठीक हो जाओ। आप अगर ऐसे लेटे रहोगे तो मैं कैसे बनूंगी आईपीएस ऑफिसर? फिर दादी ने सुनैना का हाथ पकड़ा और उसे कहा, मुझे प्रॉमिस कर तू एग्जाम देगी। सुनैना ने अपना सिर हिलाया, दादी का हाथ पकड़ा और कहा, दादी प्रॉमिस, मैं एग्जाम दूंगी। इस बार सुनैना ने बहुत ज्यादा मेहनत की। शायद उसके दिलो दिमाग में एक डर भी था कि कहीं उसकी दादी उसका साथ ना छोड़ दे। तो इस बार मेहनत थी वो पिछले बार की मेहनत से 10 गुना ज्यादा थी, और इस मेहनत का फल भी उसे मिला। इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुए, मेंस भी क्लियर हुए। अब सारा जो मेहनत करनी थी, जो मशक्कत करनी थी, वो थी इंटरव्यू पे। पूरे मोहल्ले में एक्साइटमेंट थी। कविता भी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने पहली बार सुनैना के लिए खुद चाय बनाई। इंटरव्यू के दिन दादी ने उसके सर पर हाथ रखा, ऑफिसर लग रही है। फिर सुनैना अपनी दादी का आशीर्वाद लेकर, अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी इंटरव्यू के लिए। जब वो इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी, उसके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों के जवाब वो ढूंढ रही थी, ऐसे सवाल जिसका वो जवाब दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ऐसे सिचुएशन में सुनैना खुद को पा रही थी। पर उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस दिन वो इंटरव्यू। फिर वो इंटरव्यू के लोकेशन पर पहुंची। जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे सब सामने बैठे हुए थे, सुनैना उनके सामने बैठी हुई थी। Why do you want to become an IPS officer? सुनैना ने डीप ब्रीथ ली। Because I know what helplessness feels like. और मैं चाहती हूं कि किसी और लड़की को वो हेल्पलेसनेस फील ना हो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
एक पैनल मेंबर ने पूछा, हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? सुनैना ने प्राउडली कहा, मेरी दादी। बोर्ड मेंबर्स के सवाल, सुनैना के जवाब। बोर्ड मेंबर्स के सवाल, सुनैना के जवाब। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वो इंटरव्यू हुआ। अब उसके बाद रिजल्ट डे था। रिजल्ट डे आया, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट। इंटरनेट कैफे के बाहर भारी भीड़। सुनैना के हाथ कांप रहे थे। रोल नंबर टाइप किया, स्क्रीन लोड हुई। AIR 43 IPS। उसकी सांसें रुक गई। आ गया। वो जोर जोर से रो पड़ी, घर भागी। दादी दादी दादी दादी, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। दादी बेड पर थी। सुनैना उनके पैरों में गिर गई। दादी, हो गया। शकुंतला देवी की आंखें भर आई उस दिन। वो रोते रोते कहने लगी, मैंने बोला था ना तू आईपीएस ऑफिसर जरूर बनेगी। दादी और पोती के बीच का ये जो संवाद था, ये जो प्यार था, ये जो क्षण था, ये देखकर कविता भी रो पड़ी। उसने पहली बार अपनी बेटी को गले लगा और कहा, आई एम सॉरी बेटा। सुनैना सिर्फ रोती रही और रोती रही और रोती रही। उस रात छोटा सा घर पहली बार इतना बड़ा लग रहा था जैसे मानो आसमान उनके सामने छोटा लगने लगे। फिर उसके बाद क्या, आखिर में वो दिन आया जब दादी का सपना पूरा होने वाला था। ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, पासिंग आउट परेड का दिन। सुनैना आईपीएस यूनिफॉर्म में खड़ी थी, कैप पैच कॉन्फिडेंस, फ्रंट रो में व्हीलचेयर पर दादी बैठी थी। वीक थी पर आंखों में प्राइड था, गर्व था। सेरेमनी के बाद सुनैना सीधे उनके पास आई। सैल्यूट दादी। दादी हंस पड़ी, अरे पगली। सुनैना रो पड़ी, ये यूनिफॉर्म मेरी नहीं है दादी, फिर आपकी है। दादी ने उसका चेहरा छुआ, अब किसी और सुनैना को हारने मत देना बेटा। कुछ महीने बाद आईपीएस ऑफिसर सुनैना शर्मा एक गवर्नमेंट स्कूल में स्पीच दे रही थी। बच्चे ताली बजा रहे थे। एक छोटी लड़की ने पूछा, मैम अगर घर वाले सपोर्ट ना करें तो क्या करें? सुनैना कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर मुस्कुराई। बस एक इंसान चाहिए होता है जो आप पर यकीन करे, जैसे मेरी दादी। उसने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि कुछ महीने पहले शकुंतला देवी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, पर उनका सपना जिंदा था, यूनिफॉर्म में, एक सैल्यूट में, एक कहानी में, और हर उस बच्ची में जो फेलियर के बाद भी खुद को खत्म नहीं होने देती थी। तो दोस्तों, देखा हमने, जाना हमने कि कैसे सुनैना का सपना सुनैना ने अपने दादी के माध्यम से, अपने दादी की बातों से, दादी की जिद से पूरा किया। आज दादी नहीं थी, पर उनका सपना सुनैना के फॉर्म में जिंदा था। और यही जिंदगी हमें सिखाती है कि हार जाना ही सबसे गलत चीज है। अगर आप गिर जाओ तो आप खड़े हो सकते हो, दोबारा कोशिश कर सकते हो। तो इसी सीख के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली बार अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों का गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर, साइन ऑफ।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आज़ादी के पहले की, जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कंधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने, सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कंधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेटो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है।
आनंद धीरे से बोला, अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हिमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे? अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने। अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा? हम कैसे चैन से जी पाएंगे? हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे?

लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा। तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

स्वागत है दोस्तों आपका। ब्रेक के बाद हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उन पे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखे गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा। उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी। वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद,

आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हाँ मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो? हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा, क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी, तुम लौटोगे। लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून तुकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक! आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी। वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग! आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले आनंद, आनंद भाग! और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हिमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी है, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मंडली कसे आहात सगळे, ऑल गुड ना? हमारे प्यारे ऑडियंस की तारीफ में पेश है कुछ लाइनें। अर्ज किया है, स्वाद के जायके की वादियों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको न्योता देते हैं, आपकी मौजूदगी का हमें था बेसब्री से इंतजार। इस खुशी को हम दिल की गहराई से सजाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैंगो मूड वाला फूड हम फिर से बनाएंगे और इस आम वाले सीजन को खास बनाने हम फिर से हाजिर हैं। कच्चा आम मींस कैरी से बनी रेसिपीज तो हमने बना ली, उसके बाद पके हुए आम से भी कई सारी मीठी और तीखी रेसिपीज हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज हम एक मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। झटपट बनने वाली मैंगो रेसिपीज तो हमने सीख ली, अब सिस्टमैटिक तरीके वाली मैंगो रेसिपी को हम बनाते हैं। 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से होते हुए एक व्यंजन भारत आया, फिर भारतीय मसालों और सब्जियों के साथ इसने अपना रूप बदला। इस रेसिपी का नाम था वेज पुलाव। हरे मटर के दाने और साबुत मींस अखे गरम मसालों को इस्तेमाल करके बनता है मटर पुलाव। गाजर, आलू, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनता है वेज पुलाव। सब्जियों के साथ साथ अगर इसमें पनीर के टुकड़े भी डालें तो तैयार होता है पनीर पुलाव। और सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश के साथ पनीर और फलों के टुकड़े शाही अंदाज में पकाकर तैयार होता है नवरत्न पुलाव। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? तो जनाब सुनिए, पुलाव बनाते समय चावल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, बिरयानी बनाते समय चावल और करी को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उनकी परत मींस लेयर लगाकर दम दिया जाता है। यह है पुलाव और बिरयानी का इम्पोर्टेंट फर्क। अब हम आज की पहली रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मैंगो पुलाव। मैंगो के सीजन को बाय बाय करने से पहले हम इसे बना ही लेते हैं। मैंगो पुलाव ये एक मीठी रेसिपी है जिसमें अल्फोंसो मैंगोज को कुछ गरम मसालों के साथ बासमती चावल को यूज करके बनाया जाता है। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, अल्फोंसो मैंगो पल्प एक कटोरी, बारीक कटे हुए आम के टुकड़े एक कटोरी, शक्कर 4-5 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, केसर के धागे 15 से 20, इलायची पाउडर 2 चुटकी, देसी घी लगभग आधा कटोरी। फिर हमें चाहिए लौंग 4 या 5, काजू बादाम के टुकड़े और किशमिश 4 चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़ों की बजाय आप उसका पाउडर लें तो पुलाव में थोड़ा सा तीखापन आएगा। फिर हमें चाहिए सोक्ड पिस्ता के स्लाइस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इस रेसिपी को सुनने से पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को धोकर लगभग आधे घंटे तक हम इसे पानी में सोक करते हैं। ऐसा करने से चावल के दाने पानी सोक कर फूल जाते हैं, जिससे वो पकते समय टूटेंगे नहीं। चावल के दानों की लंबाई भी बढ़ती है और उन्हें पकाते समय वो बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बन जाते हैं। लगभग 1 इंच ऊपर तक ताजे पानी में हमें बासमती चावल को सोक करना है। चलिए अब हम मैंगो पुलाव बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाले एक बर्तन में देसी घी को गर्म कीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। घी गरम होने के बाद उसमें लौंग डालिए, फिर दालचीनी के टुकड़े या पाउडर को भी डालिए। जैसे ही ये पक जाए मींस अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकंड्स के बाद इसमें 2 कटोरी पानी डालिए। थोड़े समय बाद उस पानी में उबाल आएगा, फिर उस उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें शक्कर भी डालिए।
साथ ही कटे हुए आम के टुकड़े भी उसमें डालिए। इस स्वाद को एनहांस करने हम डालेंगे ताजे नींबू का रस। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए सोक्ड बासमती चावल। फिर क्या करना है? अरे भाई, फिर धीमी आंच पर इन चावलों को पकने दीजिए। ये चावल जब पक रहे होंगे तब इसकी खुशबू आपको खुश कर देगी। लगभग 15-20 मिनटों के बाद ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद वो पके हुए चावल एक प्लेट में निकालिए। अब हमें इन चावलों को ठंडा करना है। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हमें गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हमारे बासमती चावल हो गए हैं ठंडे और हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। तो भाई आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि एक कढ़ाई में पाव कटोरी घी लेना है, फिर गैस को ऑन करके हमें घी को गर्म करना है। अब इस गरम घी में हम डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दीजिए। आप गैस को बंद मत कीजिए। उस बचे हुए घी में फ्रेश मैंगो पल्प डालिए। धीमी आंच पर ये मैंगो पल्प 2-3 मिनटों तक अच्छे से पकाइए। ध्यान रहे ये जले नहीं। फिर उस पके हुए आमरस में डालिए पकाकर ठंडे किए हुए चावल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर और साथ ही आम के कुछ टुकड़े। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। आखिर में केसर, इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कीजिए। बाद में इस कढ़ाई पर एक ढक्कन रख दीजिए। 1-2 मिनट के लिए मींस एक भाप आने तक इसे पकने दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। एक सर्विंग प्लेट में तैयार मैंगो पुलाव को निकालिए। उस गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू को अपने मन में भी भर लीजिए। फिर सोक्ड और स्लाइस्ड पिस्ता के टुकड़ों से तैयार मैंगो पुलाव को डेकोरेट कीजिए। इस मैंगो पुलाव के साथ क्या खा सकते हैं? तो भाई इसके साथ आप खा सकते हैं आम का तीखा अचार या गोरी गोरी और क्रिस्पी कुरड़ई। और इसकी रंगत बढ़ाने के लिए आप एक ग्लास मट्ठा मींस मसाला छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हमारा मैंगो पुलाव हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने अगर आप हो रहे हैं बेकरार तो फिर इसे तुरंत बनाइए। अब ये मैंगो पुलाव बन जाए तब इसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाएं। एक और खास बात, मैंगो पुलाव को सोफिस्टिकेटेड तरीका I mean काटा चम्मच से मत खाइए, इसे अपने हाथों से ही बिंदास खाइए। अपनी उंगलियों से मैंगो पुलाव का टेम्परेचर और टेक्सचर फील कीजिए, फिर एक नजाकत से उसका निवाला उठाइए। खाने से पहले मैंगो पुलाव का अरोमा मींस जायका फील कीजिए, बाद में एकदम तसल्ली के साथ आराम से उसे एंजॉय कीजिए। इतना लजीज खाना खाने के बाद उस खाना बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए। इस मैंगो पुलाव की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है जश्ने आम। फिलहाल चल रहा है एक मौसम, नाम है जिसका आम। स्वाद का जायका इस शो पर जश्न मनाएंगे खास। कभी बनाया मैंगो पराठा तो कभी मैंगो सालसा, इस आम ने हमारे किचन में सेलिब्रेट किया जलसा। आम तेरे कितने रूप, मैं वारी जाऊं तुझ पे, इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर मैं तो इतराई खुद पे। नाम तो है इसका मैंगो या आम, स्वाद है एकदम अनोखा, तभी तो दिल में जगह इसकी खास। इस आम की रेसिपी ने मेरे दिल को इतना लुभाया, साइड में रख दी डाइटिंग और जी भर के आम खाया। मेरे भारत देश से जुड़ी ये आम बातें, दोस्ती होती पक्की खाना खाते खाते। आम का पुलाव बनाकर मनाया जश्ने आम, आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए एकदम खास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की ओर। आम के अलावा एक और चीज है जिसे गर्मियों के सीजन में जी भर के खाया जाता है। बॉटनिकली ये एक फ्रूट है, लेकिन ये मिलता है सब्जी वाले के पास। सैंडविच, कचुम्बर और सलाद बनाते समय इसे यूज करते हैं। इसमें 95% से ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अपने हाइड्रेटिंग गुणों और कुरकुरेपन के लिए ये फेमस है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से स्किन में चमक आती है, इसलिए अपने ब्यूटी रेजिम में इसे जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, सही गेस किया आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खीरा मींस ककड़ी की। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी। जब ककड़ी को किसी खास अंदाज में स्टाइलिश तरीके से पेश करना हो तब आप खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी को जरूर बनाइए। ये एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग और हेल्दी टाइप का ड्रिंक है, इसे आप लगभग 5 मिनट में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्यूकम्बर स्मूदी मतलब खीरा स्मूदी को बनाने की क्विक रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा सा एक खीरा मतलब काकड़ी, ताजा दही 1.5 कप, ताजा पुदीना 8 से 10 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, चीनी मींस शक्कर 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं चुटकी भर काला नमक ले रही हूँ। अब हम क्यूकम्बर स्मूदी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर मींस ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए, फिर पीलर से उसका छिलका हटाइए। छिलका हटाने के बाद उसके छोटे टुकड़े आप बनाइए। अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट बात, उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले खाइए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो वो ककड़ी आप फेंक दें, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है। कड़वी ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर उस ककड़ी को बारीक टुकड़ों में काट। अब हमें मिक्सर में स्मूदी को बनाना है।
इसके लिए मिक्सर के बड़े जार में खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े और पुदीने के पत्ते डालिए। इसे एक मिनट के लिए मिक्सर में घुमाइए। ऐसा करने से इसका फाइन पेस्ट बनेगा। अब इसमें दही, शक्कर और नींबू का रस भी डालिए, साथ ही चुटकी भर काला नमक भी ऐड कीजिए। अब मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। लगभग एक या दो मिनटों में ये मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे पेश करने का टाइम हो गया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी शक्कर, लगभग आधा या एक चम्मच नमक और शक्कर मिक्स करके रखिए। फिर कांच का एक लंबा ग्लास लीजिए। उस कांच के ग्लास के किनारों को थोड़ा सा पानी लगाइए। फिर उस ग्लास को उल्टा करके नमक और शक्कर की प्लेट पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से होगा ये कि जब आप क्यूकम्बर स्मूदी को सर्व करेंगे तब उसके किनारों पर क्रिस्टल्स जैसी चमक दिखेगी और क्यूकम्बर स्मूदी का प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? फिर उस ग्लास में एकदम आराम से क्यूकम्बर स्मूदी को डालिए। उसके ऊपर पुदीना के दो पत्ते भी रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल कैमरा में क्यूकम्बर स्मूदी की छवि को कीजिए बंद, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस क्यूकम्बर स्मूदी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मखमली स्मूदी। गर्मी को भगाने के लिए बनाई क्यूकम्बर स्मूदी। इसका टेक्सचर ऐसा लगता जैसे खट्टा मीठा मखमली। ककड़ी में जब मिला ताजा ताजा दही, तब जाकर बना स्मूदी का टेक्सचर सही। इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक, काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन। झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना। उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉनस्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल पकोड़े जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाएं? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम। आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने। हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम इस कहानियों की गुल्लक में एक कहानी और डालेंगे और इस कहानियों की गुल्लक को फिर से ज्यादा और भारी करेंगे। आज की कहानी है चार दोस्तों की। चार यार एक दोस्ती जो कभी टूटी नहीं। मुंबई की बारिश का एक अलग ही मूड होता है, कभी रोमांटिक, कभी डिप्रेसिंग और कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, समीर, फैजान और कबीर। चार अलग पर्सनालिटीज, चार अलग सपने, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनकी दोस्ती। वो दोस्ती जो स्कूल के एक ब्रोकन बेंच से शुरू हुई और जिंदगी के सबसे बड़े तूफान तक साथ चली। मुंबई के एक गवर्नमेंट स्कूल का क्लासरूम, टीचर अटेंडेंस ले रही थी। समीर खान प्रेजेंट मैम, कबीर शर्मा प्रेजेंट मैम, आरव मेहता प्रेजेंट मैम, फैजान अली प्रेजेंट। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये चार नाम एक दिन एक दूसरे की जिंदगी बन जाएंगे। लंच ब्रेक में एक इंसिडेंट हुआ, एक सीनियर बच्चा फैजान का टिफिन ले गया और मजाक उड़ाने लगा। अरे देख बिरयानी वाला आ गया है, पूरा क्लास हंस रहा था, फैजान चुप था। तभी आरव खड़ा हुआ, भाई टिफिन वापस दे दे। सीनियर साहब तू क्या करेगा। आरव ने सीधा उसके हाथ से टिफिन खींच लिया। उस दिन पहली बार समीर और कबीर ने आरव को देखा और समझा कि ये लड़का अलग है। उसके बाद चारों एक बेंच पे बैठने लगे। स्कूल के बाद कटिंग चाय, क्रिकेट, असाइनमेंट्स, मास्क बंक, पनिशमेंट सब साथ में और धीरे धीरे दोस्ती फैमिली बन गई। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं वक्त बदलता है और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती, तो ठीक वैसा इन चारों दोस्तों के साथ भी हुआ। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, लेकिन हर किसी का स्ट्रगल अलग था। आरव मिडिल क्लास फैमिली से था, फादर ऑटो चलाते थे। आरव का सपना था फिल्म मेकर बनने का, लेकिन घर वालों को लगता था फिल्म लाइन में फ्यूचर नहीं है। समीर ब्रिलियंट कोडर, कंप्यूटर का मैजिशियन, लेकिन फाइनेंशियली वीक। कभी कभी इंटरनेट रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं होते थे उसके पास। कबीर बड़ा फनी बंदा था, हर सिचुएशन में जोक मार देता लेकिन अंदर से ब्रोकन। उसके पेरेंट्स रोज फाइट जो करते थे वो बस हंस के सब हाइड करता था। फैजान सिंगर बनना चाहता था, आवाज दिल को छू लेती थी, लेकिन उसके अब्बू चाहते थे कि वो उनकी गैरेज शॉप संभाले। गाने से घर नहीं चलता, ये सेंटेंस उसने हजार बार सुना था। एक रात चारों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, बारिश हो रही थी। कबीर बोला, एक प्रॉमिस करते हैं, जब भी लाइफ में कितना भी बड़ा स्ट्रगल आए हम साथ रहेंगे। सबने हैंड्स स्टैक किए, फॉरएवर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि असली टेस्ट अभी बाकी है। कॉलेज के फाइनल ईयर में आरव को एक आइडिया आया, व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन कंटेंट चैनल, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, सोशल मीडिया कंटेंट। समीर टेक्निकल संभाल लेगा, फैजान म्यूजिक संभाल लेगा, कबीर एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग कर लेगा, आरव डायरेक्शन। सब एक्साइटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम एक थी, पैसे, कैमरा रेंट, लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, सब कुछ एक्सपेंसिव था। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे शूट, कभी स्लम एरिया में, कभी टेरेस पे। उनका पहला वीडियो सिर्फ 312 व्यूज ले पाया, दूसरा 89 और तीसरा तो पूछो ही मत, ओनली 41। कबीर फ्रस्ट्रेटेड हो गया।

के बारे में बहुत कुछ सुना है। उस आदमी का नाम था विक्रम मल्होत्रा, एक बिजनेसमैन। उसने ऑफर दिया, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है, काम सिंपल है और उसके तुम्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख चारों के लिए एक काफी ह्यूज अमाउंट था। विदाउट थिंकिंग डीपली उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। 3 महीने तक नॉनस्टॉप काम हुआ, नो स्लीप, नो पार्टीज, नो फन, बस काम। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पेमेंट भी मिल गई, सब खुश थे। लेकिन एक वीक बाद पुलिस समीर के घर पहुंची।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 एफएम में। जैसे कि हम सुन रहे थे, चार दोस्त, चारों का एक सपना। एक सपना वो ऐसा लिए आए थे कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला, लेकिन उनका चैनल बहुत तड़ाक से नीचे गिर चुका। पहला वीडियो 312, दूसरा वीडियो 89 और तीसरे का तो हाल मत पूछो, 41 व्यूज। लेकिन एक जिद थी कि कुछ करना है, तो एक ऑफर मिला जिसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना था प्रोजेक्ट, वो बना लिया, उससे 5 लाख रुपए भी कमा लिए। लेकिन पुलिस आ गई थी अब समीर के घर, तो देखते आगे कहानी में क्या होता है। पुलिस समीर के घर पहुंची। समीर खान, हाँ, तुम्हें साइबर केस में अरेस्ट किया जाता है। सब शॉक, क्या तुम्हें साइबर फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जा रहा है? जो सॉफ्टवेयर तुमने बनाया था वो इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में यूज हुआ है। समीर, फैजान, कबीर, आरव, सब शॉक। विक्रांत ने उन्हें पॉन की तरह यूज किया था। न्यूज चैनल्स पे नाम आ गया, कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। फैजान के अब्बू ने थप्पड़ मारा, यही कर रहा है तुम। कबीर के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। आरव के फादर की

तबीयत खराब हो गई स्ट्रेस में, सब टूट गया एक गलती से और पूरी जिंदगी उलट गई, जैसे मानो कभी कुछ था ही नहीं, सब एक पल में उथल पुथल हो गया। चारों दोस्तों की जिंदगी रास्ते पर आ गई थी। समीर जेल में चला गया, उसकी आंखों में गिल्ट था, वो खुद को कोस रहा था, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब गलत कर दिया, मुझे वो ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा बोला, नहीं भाई, हम सब साथ थे। कबीर पहली बार सीरियस था, अब क्या करेंगे, कोई आंसर नहीं था। 3 दिन तक सब होपलेस रहे, फिर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, अननोन नंबर, और उस कॉल पे कहा गया, तुम लोगों को फंसाया गया है। वॉइस फीमेल की थी, मैं विक्रांत की एक्स एम्प्लॉय हूं, मेरे पास प्रूफ है। सब शॉक थे। उस एक लड़की का नाम था नैना, वो विक्रांत के इल्लीगल ऑपरेशंस जानती थी, लेकिन वो डर के मारे चुप थी। अब फाइनली वो इन चारों को हेल्प करना चाहती थी। नैना ने बताया, विक्रांत के ऑफिस सर्वर में सब एविडेंस है। समीर बोला, अगर वो डेटा मिल गया तो मैं इनोसेंट टू हो सकता हूं। प्रॉब्लम, सर्वर हेविली सिक्योर था और विक्रांत डेंजरस आदमी था, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर समीर को खुद को इनोसेंट प्रूफ करना है तो उसको एविडेंस की जरूरत थी। एक रात चारों सीक्रेटली विक्रांत के ओल्ड वेयर हाउस पे गए। रेनी नाइट, डार्क बिल्डिंग, हार्ट बीट फास्ट। कबीर नर्वस था, भाई अगर पकड़े गए तो? फैजान बोला, तो साथ पकड़े जाएंगे। ये लाइन सुनकर सब मुस्कुरा गए। अब वेयरहाउस पे एकदम काला अंधेरा, सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह पे वॉचमैन घूम रहे हैं, लेकिन समीर को इनोसेंट प्रूफ करना था तो ये कदम उनको बढ़ाना ही था। और ये जो सिचुएशन थी इसे फेस करना ही था। तो चारों ने डिसाइड किया कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब वो इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे और समीर को इनोसेंट प्रूफ करके रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक दोस्त अगर फंस जाता है तो उसके 3 दोस्त उसे इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अपनी जान का जोखिम तक ले लेते हैं। अब इसके आगे वाली कहानी का हिस्सा हम सुनेंगे ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। आप सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक, जिसमें हम सुना रहे थे चार दोस्तों की कहानी। चार दोस्त अभी विक्रम के ओल्ड वेयरहाउस पे पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर ऑफिस में जाने का कोई रास्ता नहीं था। और जाकर ये पता चला कि सारी चीजें वहां पे एकदम सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बनाया एक प्लान कि रात में किस तरीके से विक्रम के पुराने ऑफिस में जाएंगे, समीर किस तरीके से सिस्टम हैक करने लगेगा और कौन क्या क्या काम करेगा। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। चारों विक्रम के ओल्ड वेयरहाउस में पहुंच चुके थे। सबने डिसाइड किया था अपना अपना टास्क, सबको क्या करना है, और अपने टास्क के मुताबिक काम शुरू हुआ। समीर सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रहा था। आरव कैमरास देख रहा था। कबीर गार्ड डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फनी एक्टिंग से। फैजान बेसमेंट में फाइल सर्च कर रहा था। सब परफेक्टली चल रहा था, तभी अलार्म बज गया। रन रन रन, गार्ड्स उनके पीछे भागने लगे। कबीर गिर गया। एक गार्ड उसके पास पहुंच गया, लेकिन वापस आरव आ गया। उसे हाथ मत लगाना। फाइट स्टार्ट हो गई। फैजान ने कबीर को उठाया। समीर चिल्लाया, डाटा मिल गया, डाटा मिल गया। लेकिन एग्जिट ब्लॉक था, सब कॉर्नर ब्लॉक हो गए थे। उस वक्त कबीर हंसा और बहुत जोर से हंसा। आरव गुस्सा हुआ, पागल है क्या तू? कबीर बोला, भाई स्कूल में प्रॉमिस किया था ना साथ रहेंगे। उस मोमेंट पे उन्हें डर से ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे स्कूल में किए हुए प्रॉमिस को कितना ज्यादा महत्व देते हैं या कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये एक उसी की कहानी चल रही थी। अब दौड़ भाग कर वो वहां से निकल पड़े। फाइनली नैना से ये चारों मिले। नैना ने सीक्रेटली पुलिस को सारे एविडेंस भेज दिए। विक्रम अरेस्ट हो गया। न्यूज चैनल की हेडलाइन बदल गई, यंग स्टूडेंट फ्रेम्ड बाय बिजनेसमैन। समीर फ्री हो गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए, लेकिन इमोशनल डैमेज अब भी था। सोसाइटी स्टिल जज देम। लोग विस्पर करते हैं, ये वही फ्रॉड वाले लड़के हैं। कबीर डिप्रेस होने लगा था। फैजान ने सिंगिंग छोड़ दी थी। आरव शांत हो गया था। सब फिजिकली फ्री तो थे, लेकिन मेंटली ब्रोकन थे। और फिर एक दिन आरव ने ओल्ड हार्ड ड्राइव निकाली। उसमें उनके पुराने वीडियोस थे, मस्ती, लाफ्टर, ड्रीम्स। कबीर स्लोली स्माइल करने लगा। फैजान की आंखों में टीयर्स आ गए। आरव बोला, हमने गलती की, लेकिन क्राइम नहीं। हम गिर गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। समीर ने पूछा, अब क्या? आरव ने स्माइल किया और कहा, अब कम बैक। चारों ने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार फेक ग्लैमर नहीं, रियल स्टोरीज। लोगों के स्ट्रगल्स पर, लोगों की मेंटल हेल्थ पर, फ्रेंडशिप पर, फेलियर पर। उनका कंटेंट अब उनसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों की जिंदगी को बताने के लिए जुड़ा हुआ था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अब वो कैमरा में कैद करने लगे थे, उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाने लगे थे। उनका एक पॉडकास्ट इसी तरीके से वायरल हो गया, When Life Frames You, Million of Views। लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स भर गए, भाई ये तो मेरी स्टोरी है, रियल फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट, यू गाइस सेव्ड मी। स्लोली स्लोली सब चेंज होने लगा। फैजान का म्यूजिक फेमस होने लगा। समीर को स्टार्टअप जॉब मिली। कबीर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। आरव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया। 10 साल बाद सेम मरीन ड्राइव, सेम बारिश, बस चेहरे मैच्योर हो गए थे। कबीर चाय सिप करते हुए बोला, भाई अगर उस टाइम हम टूट जाते ना तो आज कुछ नहीं होता। फैजान स्माइल्ड,
हम प्रॉब्लम में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम वीक नहीं थे, हम फंसे क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस थे। समीर एडिट, लेकिन निकले क्योंकि हम यूनाइटेड थे। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होती दोस्तों, दोस्ती का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बारिश तेज हो गई, चारों फ्रेंड समंदर के सामने खड़े थे और उनकी फ्रेंडशिप हुई, हर लहर से ज्यादा स्ट्रांग थी उनकी फ्रेंडशिप। कई बार जिंदगी आपको गलत रास्तों पे धकेल देती है, लेकिन अगर आपके पास सच्चे दोस्त तो हर अंधेरा छूटने लगता है, हर अंधेरा मिटने लगता है, एक नया सवेरा जरूर आता है, एक नई जिंदगी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई कहानी लेकर, एक नया दिन लेकर। और वो नई उम्मीद, वो नई किरण हमारी जिंदगी में कब इतनी बड़ी विक्ट्री दे जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो वक्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हें, जो तुम्हारे आंसू आने पर तुम्हें हंसाने लगे वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे साथ चलते हैं वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे सपने को अपना सपना समझते हैं वही दोस्त होते हैं, जो गिरने पर सर पे टपली मार के उठाए वही दोस्त होते हैं, जो बेवजह बिन बात मजाक उड़ाए वही दोस्त होते हैं। सो ऐसी दोस्तों की सुन रहे थे हम कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो पर एक साथ रहकर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है, हर मुसीबत पे काबू पाया जा सकता है, हर बुरे इंसान को हराया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा साथ में रहना, हमारा हमारे दोस्तों को सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ खड़े रहना। तो आज की कहानियों की गुल्लक में बस इतना ही, हम दोबारा फिर मिलेंगे आचार्य 90 FM पर, तब तक सुनते रहिए कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।

आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मंडली कसे आहात सगळे, ऑल गुड ना? हमारे प्यारे ऑडियंस की तारीफ में पेश है कुछ लाइनें। अर्ज किया है, स्वाद के जायके की वादियों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको न्योता देते हैं, आपकी मौजूदगी का हमें था बेसब्री से इंतजार। इस खुशी को हम दिल की गहराई से सजाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैंगो मूड वाला फूड हम फिर से बनाएंगे और इस आम वाले सीजन को खास बनाने हम फिर से हाजिर हैं। कच्चा आम मींस कैरी से बनी रेसिपीज तो हमने बना ली, उसके बाद पके हुए आम से भी कई सारी मीठी और तीखी रेसिपीज हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज हम एक मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। झटपट बनने वाली मैंगो रेसिपीज तो हमने सीख ली, अब सिस्टमैटिक तरीके वाली मैंगो रेसिपी को हम बनाते हैं। 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से होते हुए एक व्यंजन भारत आया, फिर भारतीय मसालों और सब्जियों के साथ इसने अपना रूप बदला। इस रेसिपी का नाम था वेज पुलाव। हरे मटर के दाने और साबुत मींस अखे गरम मसालों को इस्तेमाल करके बनता है मटर पुलाव। गाजर, आलू, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनता है वेज पुलाव। सब्जियों के साथ साथ अगर इसमें पनीर के टुकड़े भी डाले तो तैयार होता है पनीर पुलाव। और सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश के साथ पनीर और फलों के टुकड़े शाही अंदाज में पकाकर तैयार होता है नवरत्न पुलाव। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? तो जनाब सुनिए, पुलाव बनाते समय चावल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, बिरयानी बनाते समय चावल और करी को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उनकी परत मींस लेयर लगाकर दम दिया जाता है। यह है पुलाव और बिरयानी का इम्पोर्टेंट फर्क। अब हम आज की पहली रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मैंगो पुलाव। मैंगो के सीजन को बाय बाय करने से पहले हम इसे बना ही लेते हैं। मैंगो पुलाव ये एक मीठी रेसिपी है जिसमें अल्फोंसो मैंगोज को कुछ गरम मसालों के साथ बासमती चावल को यूज करके बनाया जाता है। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, अल्फोंसो मैंगो पल्प एक कटोरी, बारीक कटे हुए आम के टुकड़े एक कटोरी, शक्कर 4-5 चम्मच, नींबू का रस एक चम्मच, केसर के धागे 15-20, इलायची पाउडर 2 चुटकी, देसी घी लगभग आधा कटोरी। फिर हमें चाहिए लौंग 4 या 5, काजू बादाम के टुकड़े और किशमिश 4 चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़ों के बजाय आप उसका पाउडर लें तो पुलाव में थोड़ा सा तीखापन आएगा। फिर हमें चाहिए सोक्ड पिस्ता के स्लाइस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इस रेसिपी को सुनने से पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को धोकर लगभग आधे घंटे तक हम इसे पानी में सोक करते हैं। ऐसा करने से चावल के दाने पानी सोक कर फूल जाते हैं जिससे वो पकते समय टूटेंगे नहीं। चावल के दानों की लंबाई भी बढ़ती है और उन्हें पकाते समय वो बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बन जाते हैं। लगभग 1 इंच ऊपर तक ताजे पानी में हमें बासमती चावल को सोक करना है। चलिए अब हम मैंगो पुलाव बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाले एक बर्तन में देसी घी को गरम कीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। घी गरम होने के बाद उसमें लौंग डालिए, फिर दालचीनी के टुकड़े या पाउडर को भी डालिए। जैसे ही ये पक जाए मींस अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकेंड्स के बाद इसमें 2 कटोरी पानी डालिए। थोड़े समय बाद उस पानी में उबाल आएगा, फिर उस उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें शक्कर भी डालिए,
साथ ही कटे हुए आम के टुकड़े भी उसमें डालिए। इस स्वाद को एनहांस करने हम डालेंगे ताजे नींबू का रस। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए सोक्ड बासमती चावल। फिर क्या करना है? अरे भाई, फिर धीमी आंच पर इन चावलों को पकने दीजिए। ये चावल जब पक रहे होंगे तब इसकी खुशबू आपको खुश कर देगी। लगभग 15-20 मिनटों के बाद ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद वो पके हुए चावल एक प्लेट में निकालिए। अब हमें इन चावलों को ठंडा करना है। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हमें गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हमारे बासमती चावल हो गए हैं ठंडे और हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। तो भाई आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि एक कढ़ाई में पाव कटोरी घी लेना है, फिर गैस को ऑन करके हमें घी को गर्म करना है। अब इस गरम घी में हम डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दीजिए। आप गैस को बंद मत कीजिए। उस बचे हुए घी में फ्रेश मैंगो पल्प डालिए। धीमी आंच पर ये मैंगो पल्प 2-3 मिनटों तक अच्छे से पकाइए। ध्यान रहे ये जले नहीं। फिर उस पके हुए आमरस में डालिए पकाकर ठंडे किए हुए चावल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर और साथ ही आम के कुछ टुकड़े। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। आखिर में केसर, इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कीजिए। बाद में इस कढ़ाई पर एक ढक्कन रख दीजिए। 1-2 मिनट के लिए मींस एक भाप आने तक इसे पकने दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। एक सर्विंग प्लेट में तैयार मैंगो पुलाव को निकालिए। उस गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू को अपने मन में भी भर लीजिए। फिर सोक्ड और स्लाइस्ड पिस्ता के टुकड़ों से तैयार मैंगो पुलाव को डेकोरेट कीजिए। इस मैंगो पुलाव के साथ क्या खा सकते हैं? तो भाई इसके साथ आप खा सकते हैं आम का तीखा अचार या गोरी गोरी और क्रिस्पी कुरड़ई। और इसकी रंगत बढ़ाने के लिए आप एक ग्लास मट्ठा मींस मसाला छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हमारा मैंगो पुलाव हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने अगर आप हो रहे हैं बेकरार तो फिर इसे तुरंत बनाइए। अब ये मैंगो पुलाव बन जाए तब इसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाएं। एक और खास बात, मैंगो पुलाव को सोफिस्टिकेटेड तरीका काटा चम्मच से मत खाइए, इसे अपने हाथों से ही बिंदास खाइए। अपनी उंगलियों से मैंगो पुलाव का टेम्परेचर और टेक्सचर फील कीजिए, फिर एक नजाकत से उसका निवाला उठाइए। खाने से पहले मैंगो पुलाव का अरोमा मींस जायका फील कीजिए, बाद में एकदम तसल्ली के साथ आराम से उसे एंजॉय कीजिए। इतना लजीज खाना खाने के बाद उस खाना बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए। इस मैंगो पुलाव की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है जश्ने आम। फिलहाल चल रहा है एक मौसम, नाम है जिसका आम। स्वाद का जायका इस शो पर जश्न मनाएंगे खास। कभी बनाया मैंगो पराठा तो कभी मैंगो सालसा, इस आम ने हमारे किचन में सेलिब्रेट किया जलसा। आम तेरे कितने रूप मैं वारी जाऊं तुझ पे, इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर मैं तो इतराई खुद पे। नाम तो है इसका मैंगो या आम, स्वाद है एकदम अनोखा, तभी तो दिल में जगह इसकी खास। इस आम की रेसिपी ने मेरे दिल को इतना लुभाया, साइड में रख दी डाइटिंग और जी भर के आम खाया। मेरे भारत देश से जुड़ी ये आम बातें, दोस्ती होती पक्की खाना खाते खाते। आम का पुलाव बनाकर मनाया जश्ने आम, आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए एकदम खास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की ओर। आम के अलावा एक और चीज है जिसे गर्मियों के सीजन में जी भर के खाया जाता है। बॉटनिकली ये एक फ्रूट है, लेकिन ये मिलता है सब्जी वाले के पास। सैंडविच, कचुम्बर और सलाद बनाते समय इसे यूज करते हैं। इसमें 95% से ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अपने हाइड्रेटिंग गुणों और कुरकुरेपन के लिए ये फेमस है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से स्किन में चमक आती है, इसलिए अपने ब्यूटी रेजिम में इसे जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, सही गेस किया आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खीरा मींस ककड़ी की। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी। जब ककड़ी को किसी खास अंदाज में स्टाइलिश तरीके से पेश करना हो तब आप खीरे की स्मूदी मींस क्यूकम्बर स्मूदी को जरूर बनाइए। ये एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग और हेल्दी टाइप का ड्रिंक है, इसे आप लगभग 5 मिनट में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्यूकम्बर स्मूदी मतलब खीरा स्मूदी को बनाने की क्विक रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा सा एक खीरा मतलब काकड़ी, ताजा दही 1.5 कप, ताजा पुदीना 8 से 10 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, चीनी मींस शक्कर 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं चुटकी भर काला नमक ले रही हूँ। अब हम क्यूकम्बर स्मूदी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर मींस ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए, फिर पीलर से उसका छिलका हटाइए। छिलका हटाने के बाद उसके छोटे टुकड़े आप बनाइए। अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट बात, उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले खाइए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो वो ककड़ी आप फेंक दें, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है। कड़वी ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर उस ककड़ी को बारीक टुकड़ों में काट। अब हमें मिक्सर में स्मूदी को बनाना है। इसके लिए मिक्सर के बड़े जार में खीरा
मीन्स ककड़ी के टुकड़े और पुदीने के पत्ते डालिए। इसे एक मिनट के लिए मिक्सर में घुमाइए। ऐसा करने से इसका फाइन पेस्ट बनेगा। अब इसमें दही, शक्कर और नींबू का रस भी डालिए, साथ ही चुटकी भर काला नमक भी ऐड कीजिए। अब मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। लगभग एक या दो मिनटों में ये मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे पेश करने का टाइम हो गया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी शक्कर, लगभग आधा या एक चम्मच नमक और शक्कर मिक्स करके रखिए। फिर कांच का एक लंबा ग्लास लीजिए। उस कांच के ग्लास के किनारों को थोड़ा सा पानी लगाइए। फिर उस ग्लास को उल्टा करके नमक और शक्कर की प्लेट पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से होगा ये कि जब आप क्यूकम्बर स्मूदी को सर्व करेंगे तब उसके किनारों पर क्रिस्टल्स जैसी चमक दिखेगी और क्यूकम्बर स्मूदी का प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? फिर उस ग्लास में एकदम आराम से क्यूकम्बर स्मूदी को डालिए। उसके ऊपर पुदीना के दो पत्ते भी रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल कैमरा में क्यूकम्बर स्मूदी की छवि को कीजिए बंद, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस क्यूकम्बर स्मूदी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मखमली स्मूदी। गर्मी को भगाने के लिए बनाई क्यूकम्बर स्मूदी। इसका टेक्सचर ऐसा लगता जैसे खट्टा मीठा मखमली। ककड़ी में जब मिला ताजा ताजा दही, तब जाकर बना स्मूदी का टेक्सचर सही। इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक, काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन। झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना। उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली है। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉनस्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल पकोड़े जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाए? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम। आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आजे भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार। सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने। हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: है मान
1: तो। गरी सर अब गए नहीं, अब तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

0: बच्चों कैसी है पेंटिंग? देखिए, देखो
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज।